0: पालने तीन तीन ने लाई है हाँ वकार ने हम कम तेरे उसने वकार ने कुड़ा वाला बेल माते अन्य तिंग मोर्स कंप्लीट हो ने बे एम हम सातु मैं होलमोस इता वाकु बाने मोस एम ने होलमोस ने अन्य तिंग मनान अगर कम तेरे उस मकान से माते तिया इधर वकार अरे माते कम तेरे उसने माते वारक सा बोल बी हम उस समय इनको ने ले देना अगर आप तो हलानु सापर वातो आरे के उलर ने तो सिर ने हल्ताने कांडो हेतन हंसने अंत हसाई लीमा ने हंसने हिले देते रायोकोस हसाई ते हो तो अंत हम हाउ नर्वोज होनिया सुर ताहिक लाख में ताउ तेरे ताहिक लाख कोना आ सेलाए फाइ हाल डोरक ती हम आसे इधर लोर फल ने वेन रेगे फल बा मोरो ने पर देन न्यातु लवल कंटिन्यूआ इधर ने मो संस ने अमेंत तान हाल तान सन सहरुका ने वेल हतन देन नातु हालवान ओइन सम न्यातु लाख
1: Além de ne, diretor executivo Pramatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema ne be, povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modo ne be sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia, ia nyaknar Fatim, Pramatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
2: Caso para que acontece, Ular han modo sira. Ira causa ira tamba a condição rai. Para rai laguras mata ira halo modo sira no meita cura ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini de uma que tahola, fini de uma que tra la baraka, agora já me tahola fini sira de uma baraka. E fini baraka no meita sira liu, baraka makala dela data foi tenia ambientica, fatin local. E fini varat no slori mora sasi, rai dirumai. Tanda lima ka anticita tu resolve problema e tem hare causa problema básico si situação melhor, causa de pesi ataca. Nema ka